0: केळबोधी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी फिर

कलगी वालिया लिखा की सिफत तेरी कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा तेरे चोज ते तेरी वड्याई वड्डी तेरे गुणा दा चोजी भंडार वड्डा तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह जी कीता सिरां दा तू वपार वड्डा जुगा जुगा ना लथना खालसे तो सिख कौम ते तेरा उदार वड्डा परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दा खास रूप गुरु खालसा साध संगत आओ सब तो पहला पटने दे माही नीले दे शाह सवार सतगुरु तेग बहादुर जी दे लखते जिगर

पंथ दे बानी सरबंस दानी आजादी दे सच्चे सुच्चे आशिक साहिब सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी बख्शिश दोहराओ संगत रूप हो के आशीष दियो के महान ज्ञान दे सागर सरपग गुरु एस अलपग नू भी एक किनका बख्शन जो सदा आप जी दी चरण धूड़ प्राप्त हुंदी रहे। सो आओ गुरु प्यारियो शुरू करिए उत्तरा दे दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी दी सब तो छोटी उम्र विच शहादत। गुरु प्यारियो ओ समा जदों सरसा नदी तो धन गुरु गोबिंद सिंह नालों परिवार नालों माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादियां दा विछोड़ा पिया ते गुरु प्यारियो साहबजादियां दे जोड़े भी पानी विच रुड़ गए कपड़े भी गिले हो गए। उत्तों पौधा महीना ठंड भी दो उम्र ज्यादा लगती है ना एक बचपन विच एक बुढ़ेपे विच इनी ठंड ते गुरु प्यारियो उधर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भाई दया सिंह नू आख्या कि दया सिंह जा वेख के आ माता जी अते छोटे लाल किथे ने। भाई दया सिंह सारे लभे आया नहीं लभे ते अंतरयामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे दया सिंह हुण तैनू लाल ते माता जी लभणे भी नहीं। गुरु प्यारियो सतगुरां नू पता सी ऐसा विछोड़ा पिया ऐसे समय ते उत्तों पौधा महीना सारा परिवार विछड़ गया ऐसा विछोड़ा पिया

प्यारे माता जी छोटे साहब जादे हनेरे विच तुरे जा रहे ने, उत्तों काली बोली रात, सर्दी दा थमा तुरे जा रहे ने। बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी माता जी नू पूछ रहे ने भी माता जी आपा तुरे ही जाना, किथे जाना, आपा केड़ी जगह जाना है। ते माता जी कहंदे बच्चे हो जिथे वो करतार ले जाएगा ना

प्यारेओ साहब जादे कह रहे ने कि हे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जदों तुहानू कोई याद करदा तुसी दर्शन देंदे हो सानू भी अज गुप्त रूप विच दर्शन दियो। ते गुरु प्यारियो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुप्त रूप विच साहिबजादियां नू दर्शन दिते ते आख्या कि लालो तुसी डरियो ना, मैं तुहाडे नाल है, तुहाडा दादा पिता तुहाडी उडीक कर रहे है, तुहाडे वड्डे भरा तुहाडी उडीक कर रहे ने, दादा पिता उडीक कर रहे है कि कदों मेरे लाल मेरी गोद विच आउणगे। ते गुरु प्यारियो बाबा जोरावर सिंह उन्हां दियां अखां विच हंजू आ गए ते फतेह सिंह कहण लग्या कि वीर तू डोल गया, माता जी ने आपां नूं की समझाया सी, तेरियां अखां चों पानी क्यों आ गया है। बाबा जोरावर सिंह जी कहिंदा कि नहीं वीर, मैं डोलिया नहीं, मैनू दुख इस गल दा है कि तू आया ता दुनिया विच मेरे तो बाद है, ते तैनू दादा पिता दी गोद मेरे तो पहला नसीब होनी है, तू मेरे तो छोटा है ते पहला चलिया जावेगा। क्योंकि गुरु प्यारे जो नीह विच चिने जा रहे सन, दम घुटना सी ना, लाल कहन लग्या कि जलादो रुक जाओ, दो इटा धरती ते रख दियो, रख दितियां। ते बाबा फतेह सिंह कहिंदा है कि लै वीर हुण हो गया ना तेरे बराबर दा, कठे सचखंड नूं जावांगे। जलाद नीहां चिणदे जा रहे ने, छातियां तक आ गईयां, कंधां सा रुक गए। ते गुरु प्यारे हो सूबेदार कहिंदा भी जाओ, अपने सिपाहियां नूं भेजिया भी माता जी नूं जाके दसो भी आ हाल होया तेरे लालां दा, तू जाके उन्हां नूं मना लै। सिपाही गए ते कहन लगे माता जी तुसी चल के अपने पोतरियां नूं मना लो, वो सिखी छड के मुसलमान बन जान। ते गुरु प्यारियो माता गुजरी जी ने जो जवाब दिता है

कितनी जोबन प्रीत बेन सुख गए कुमलाय रीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बिरो ना उपजे सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों दिथो करियाल एहो नदोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए मारी है।

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सोह अपना तू लोड़ है अंगियार फरीदा इक ना आता अगला इक ना ना ही लोण अगे गए संजाप सन चोटा खासी कौन पास दमामे सत सिर भेरी।

फरीदा जो डहागण रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी ता चाओ वेवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी चपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधि दंज हंस उडर कुदरै पया।

दुखा से तीदे हो गया, सुना से ती रात, खड़ा पकारे पातनी, बेड़ा कपरवात।

वसै माफ ना तिदू खाए फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करिया कर आऊ सर पर मैं तै आवना मरन हो ना डरे आऊ इनी लोहनी देख दिया केती चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए कंदी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया बहसन रूह।

डूडे लिए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाऊ सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहण सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवं जानेन होण नजीक खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़क

बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार आपनो पावन कर मंत्र।

सारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे बरन चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाना हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जानी जै प्रब तेरो थान मन धन तेरो प्राण एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बडान जान कौन तेरो प्यो अलाख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तान जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाना हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार अकार अचल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्हे मलासी धन धन ते धन जन जेह कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो ते जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखियो तेहे जन तृप्त अगाए जेहे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप आपुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम ना पवै अमुलो जे कृपाल होयो गोविंद सर्ब सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिय ब्रह्मादक सनकाद से।

0: हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्ति प्रभ दाता दा तार परियो जाचक एक सरना मिलै दान संतरीन जेह लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगत सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ

अकाल मूरत अरुणी सैभम गुरुप्रसाद। हर अमृत वेले वक्ते का दीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलों में अपने शब्दों में दर्शाई। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की यह सिरजना की है इस रुत का वक्त का अपना प्रभाव है। मौसमी फिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां शाखा अपना श्रृंगार बदल रही है। उदास दिखाई दे रही है, नगम दिखाई दे रही ने ये शाखा दरख्तों ने। हू बहु मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने में मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता छिड़िया हुआ है। मौसमी बहार है, धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। किधरे पीले रंग का, किधरे गुलाबी रंग का, किधरे चिट्टे रंग का, इतनी सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। वो मौसमी बहार मनुख के मन के उ अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ

सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पेंगे, मोटे कपड़े, गर्म कपड़े लगने पेंगे, और गर्मी मजबूर कर देती है गर्म कपड़िया ने एक पासे करने के। हूबहू जो समा है, दिन दे चार पैर, रात दे चार पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे चार पैरां ने जिसमें समा कहते हैं, वक्त कहते हैं, इसका भी मन देते तन देते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना की पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय से वाकई रात के पहले पैर के अंत होंदे होंदे सौ गया तो शरीर की नींद रात के चौथे पैर के आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती, अखां खुल जाएं। एक गल वक्री है, अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देती है। असी देखते हाँ प्रकृति पंछियों जगा देंगी, पशुओं जगा देंगी, क्योंकि उन्होंने नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात के पहले पैर के अंत होंदे आंदियां चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जाते। रात का चौथा पैर आरंभ होया, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते हैं, गऊं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊं दे। सारे का सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है, वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद में प्राकृतिक नहीं रहने दिता और किधरे किधरे अपने जागरण में भी प्राकृतिक नहीं रहने दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया परमात्मा तो भी दूर होंदा। परमात्मा के निकट आने लई इसमें प्रकृति के निकट आना ही पड़ेगा, प्रकृति के प्रभाव में कबूल करना ही पड़ेगा और उसकी नियमावली में जिंदगी का अंग बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत पुराने समय तो जो आध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना के तल से जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात का चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। किंग ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात में तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। यह नींद उस भोजन में पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर पर पचा देंदी है, भार हल्का आंदा है, आलस मध्यम आंदा है, यह जाग पैंदा है। दोबारा शरीर में भोजन की लोड़ है तो हम शरीर में भजन की भी लोड़, मन भजन भी चाहिए। इस समय किंग ने सौ लुकमे दिन दे तो एक लुकमा सुबह, सारी दिन की साधना तो अमृत वेले दे एक पल की साधना बराबर हो जाती, समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज से साफ कहते हैं, जे एक होए तो उगवे रुत्ती हो रुत हो। एक तो बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजन वाली रुत भी तो चाहिए। मौसम के अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजता सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होता, तो पूर्ण फसल नाल अपने घर के कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात का चौथा पैर है इसमें साडे देश के प्राचीन सनातनी ऋषियों ने कहा कि ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के चिंतन का समय, ब्रह्म नाल जुड़न का वक्त। इसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जब अमृत की वर्षा हो रही। इसनों इस्लाम के महान बाणी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सबा,
अल्लाह दिसया। अल्लाह दिसरे वो सभा जो सभावक अल्लाह ने चेते करा दी, थोड़ी जियांगी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वथे का बीजया भगत खाए खर्च रहे मुखते ना। अंतस्करण की धरती दे जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़ता है बरकता नाल झोलियां भर जाए और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंगे। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी च लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे च उगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जाते हैं, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जाते हैं। भाई साहब भाई नंदलाल के कहंदे ने, सवद कुर्बानी खाते राहे संगत दिले गोया हमीं बस आरजू कर। इक्को आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिहड़ियां संगतां थोड़े मार्ग से चल पैंदियां ने उन्हां दे कदमां दी खास मैनू बना। वो कदम बड़े पावन, वो चाल बली महान है। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ दर्शी परमात्मा दी चाल है, परमात्मा की तरफ चलना है और एक परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल से इतने तक कहते ने, थोड़ी जी जिस किसी के अंदर जागृति पैदा हुई है उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है मानो उसकी नींद हराम, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिया भी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले का सोना मानो हराम कर छड़ा, भाव नहीं सोना स्वाभाविक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठाता है, उस समय तो लाभ उठाता है। भाई गुरदास जी तो एक प्रार्थना कर दें अकाल पुरख के अगों, आप कहते ने नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा मन की ए भाव दशा बनी है कि पैर की उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसा तक नख सिस लो सगल अंग रोम रोम कर समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ए चाहत मेरी ए मंग फिर इन्हां टुकड़िया की करिए, काट काट सिखन के चरण परवारिए, इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्होंने कदमों तो सदके करो, उठे निछावर करो, फिर भी आखिर मास के टुकड़े तो बचेंगे, की करिए। आप अगां चल के कहने ने, अगन जराए ताहे पीसन पिसाए लय उड़े पवन होए अनेक प्रकारी है। फिर मेरे मास के टुकड़िया जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्होंने पी देना, फिर पवन राणी के चरणों च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जर्रियां नूं उड़ा के लै जा। आप कहंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए लै उदे पवन होए अनेक प्रकार ये, तो पवन उड़ा के ले जाए आखिर पवन हर वक्त इस खाक में और हड्डियों के चूरे में अपने को रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहने हाँ ये सुटे, पर कितने सुटे है, जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्राग
ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डाल दे। जिधर किधर किसी भी शहर किसी भी कस्बे किसी भी थान से सिख अमृत वेले उठ के सत्संग की तरफ चल पे है। पमन राणी नु कहना मेरी मांस की खाक के हड्डियां दे चूरे ने उसके कदमा दे चीछा उसके रस्ते दे चीछा जत तत सिख पग धरे गुरु पंथ प्राह ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए तहे पद पावक चरण देव लागू रहे दया से दयाल मोहे पथक उधारी। हे परिपूर्ण परमात्मा इस तरीके नाल मैं पथक का भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु की दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन महान है। चाव नाल उमंग नाल जो समय सत्संग की तरफ चल पे है जुड़ के कीर्तन सुन रहे हैं या बैठ के वाहेगुरु मंत्र का जप कर

0: इस संबंधित एक पौड़ी भी रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कुंभ ने चरणों दुख होए सुर सरी, तज बैकुंभ जगत विच आई, सुर सरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्म के करमंडल का जल है, विष्णु के चरणों का जल है, शंकर दिया जटावान का जल है। ऐसा साढ़े देश के प्रचलन है इस मिथ का। करमंडल का पानी विष्णु के चरणों के डोले है ब्रह्म ने, ये जल आन के गिरे है शंकर दिया जटावान, और उसके चौं तो निकली गंगा की धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जब निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां भी लग रही ने वाकई जैसे शंकर दिया जटावान, और उन्हां बिचों टपक रहा है तो बूंद बूंद गंगा का जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिले सुनी। चरणों दुख होए सुर सरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 999 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालिया नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट हजार जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने 999 नदियां बेचों गंगा सरमय है, उसके जल भी अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत के जर्रे अलग तासीर है। यही कारण है कि जब कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, पानी बदले, हवा बदले, टिकाणा बदले। और ऐसा देखने विच आया है वाकई टिकाने के बदलदया आब हवा के बदलदया वो तंदुरुस्त है, वो ठीक है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा का जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन हकीम सन शरीर शास्त्री सन उन्होंने रचना तो निकले तो अमृत एक शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन कर लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन का आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर का स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर में स्वस्थ रखने दे गंगा का जल वाकई अमृत का ही काम करता है, एक महान औषधि का काम करता है। बहुत सारिया खूबियां इस विच देखिया गई, जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करती हुई ये धारा जब मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां का रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी। जब इसका कोई पान करता है इस जल का तो शरीर नवा नरोआ होंदा है, शरीर देते इस जल का अमृतमय प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने कहा गया सी इस विच कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा विच पै रहे हैं, महापाप व्यापक पद्धर से हो रहा है, महान गुना व्यापक पद्धर से हो रहा है। अमृतमयी जल में किसी हद तक विष बनाया जा रहा है, मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है तो अमृतमयी हवा ने अमृतमयी जल में थां थां से विष बनाने के जो है टुलिया होया है, किधरे भी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियों के जल के प्रवाह में इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया है। ये एक अलग विषय है, ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां बेचों गंगा सिरमौर, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई 88 तीरथ इसके किनारे पे बने हैं। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज का संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीर्थ इस तट पे बने हैं। तीर्थों की शोभाएं बनी हुई है। तीर्थ गंगा के तट पे शोभायमान दिख रहे हैं। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोग अपना तन मन इस्नान द्वारा सही करने की कोशिश देख लगे रहेंगे। तो भाई जी कहने 88 तीर्थ गंगा के तट से बने हुए 68 तीर्थ अंग समाई। तुम लोग की प्रमाण है महादेव लय शीश चढ़ाई। इसकी महिमा तुम लोगों के लिए और शिव जी ने इसमें अपने मस्तक दिखा दी। देवी देव सरेवड़े जय जय कार बड़ी बड़े आई। बड़ी मैं बड़ी तुम्हें देवी देवते तक उपासना कर देने नमस्कार कर देने जब वगदा होया इतना अमृतमयी जल इतनी वड्डी धारा तो दिस पैंदा प्रभु की बहुत वड्डी बख्शिश बहुत वड्डी रहमत। तुमने सालां बद्दी गंगा का जल बोतलों च रख दिए गंदा नहीं होंगे बदबूदार नहीं होंगे वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी औषधि है जैसे जैसे पुराना होंदा जाए उस नवीनता निखार आंदा जाए। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हूँ भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते हैं वो भी अपनी महानता रखता है। क्षण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवला है। एक गंगा नहीं लखा और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं लखा ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हाथ में चले। एक शिव जी नहीं लखा ही शिव जी दे मस्तक दा जल और एक विष्णु नहीं लखा ही विष्णु दे चरणा दा जल। क्षण गंगा बैकुंठ लख और एक बैकुंठ नहीं लखा बैकुंठ लखा गंगा लखा विष्णु के चरणा का जल लखा ही शिव जी के मस्तक का जल और लखा ही ब्रह्मिया के करमंडलों का जल। क्षण गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई साधु धूर न पूजनी साध संगत सतगुरु शरणाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है भाई गुरदास जी कहने उसके कदमों तो लखा गंगा प्रवान की जा सकती सत्य की जा सकती। वो इतना महान है सतगुरु की बाणी तो खुल के कहती है जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है उदे चरणों की जड़ी धूड़ है मानो करोड़ा गंगा का इस्नान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले का चरण जिथे रखेगा रेत दे सरिया नू अक्षीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियों के खूबसूरत नगमे उस समय सुनन में मिलते हैं चहचहाट कलोल खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुत्ता रह गया है तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन ले रूहे जमीन देख उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लगना भी औखा है। वो तो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान परिपूर्ण परमात्मा के चरणों की सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वो भेट अमृत वेला जी। बस उस समय में तू परमात्मा दे अगों रख भाव उस समय परमात्मा ले जाए। धन कमाण का अलग वक्त भोजन छकन का अलग शरीरक क्रियावान के अलग समय और समाजिक संबंध आर्थिक रिश्ते राजनीति का वेला इस दे ले अपने अपने समय में ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ, ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਲਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਬਰਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
1: ਕਿਰਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
0: Chauthe pehre subah ke surtiyan upje chao, tin dariyan aavan sang dosti, मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करन वाले ने विचारक ने दार्शनिक ने रात के चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैर सुभा के सुरतियां उपजे चाओ तिन दरिया वासों दोस्ती मन मुख सच्चा उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जाती है। उन्हां दे मन विच और उन्हां दी रसना विच मुख विच परमात्मा का नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करते हैं। दरअसल परम पद की प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होंदी है। जो लोग ऐसा नहीं करते संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठाते और मन तो पार होके परमात्मा के स्थान ते नहीं पहुंचना चाहते तो बिरती का प्रवाह जीवन शक्ति का प्रवाह विपरीत दिशा की ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करते हुए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करने की बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगों नूं रात चाहिए, रात की तारीकी चाहिए, पर मन नाल संघर्ष करना है उजाला चाहिए। अमृत वेला दिन की शुरुआत है और संध्या शाम की रात की शुरुआत। कभी गौर नाल देखिए जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लेना चाहता है, चानना लेना चाहता है, धार्मिक मंदरां दे बूहे अमृत वेले खुलते हैं। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलते हैं। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरते ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नूं बेहोशी दी दुनिया च लै जाके तारीक मंडलां विच पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराबखाने ने, जुए घर ने, वैश्याले ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी, रात दी तारीकी दी। धन गुरु गोबिंद साहिब जी महाराज की बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहिंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है, कुछ प्रकाश की ओर जा रहे है, कुछ अंधकार की ओर जा रहे है। कोई प्रकाश का प्रेमी है, कोई अंधकार का प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च नहीं, पशु पंखियों में भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात में खिड़ती है, दिन के उजाले विच सूरज दियां किरणां विच मुरझाई रहिंदी है, कुमलाई रहिंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात में खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुलां नूं देखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी विच खिड़दे ने और दिन दे उजाले विच कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदिया ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदिया पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सों विच वंडी हुई है, कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए पशुओं का जगत देखिए, पंछियों का जगत देखिए, उल्लू की जिंदगी रात की है, चमगादड़ की उड़ारी रात की है, बेशतर मच्छर इन्हां दी जिंदगी रात की है, बीमारी दे कीटाणु इन्हां दा जीवन रात दा है। रात नूं प्रसन्न होंदे ने, रात नूं उड़ारियां लांदे ने। और अक्सर जिहड़े पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़दे ने ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਿੰਸਕ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਤਰ ਦਰਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੂਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਨੇ, ਫਾੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਪੰਛੀ ਪੋ ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੀ ਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਚਵੱਗੀ ਪੋ ਫੁੱਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁ ਤਰੰਗ ਅਚਰਚ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਇਧਰ ਪੋ ਫੁੱਟੀ, ਇਧਰ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚਹਿ ਚਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਪੋ ਫੁੱਟੀ, ਇਧਰ ਸੰਤ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਚਹਿ ਚਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਛੇੜਿਆ, ਇਧਰ ਸੰਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੇੜੀ। ਇਧਰ ਚਿੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਈ। ਇਧਰ ਸੰਤ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੋ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜਗਤ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤਾਰੀਕਮਈ ਨੇ, ਪੁਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਮਲਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਝਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ, ਥੀਏਟਰ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰੌਣਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲਟੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਧਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਤਨੇ ਤਾਰੀਕਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਉੱਲੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਂਦਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਜਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਪੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ। ਤੋ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, जगत नाल संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष विच जगत नूं चोट पहुंचती है, जगत नूं हानि पहुंचती है, लेकिन संघर्ष में बिरतियां तो मनुख के अंदर है। जो अपने मन नाल संघर्ष करने राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करने अपने आप नूं समझा लवे मना लवे दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या तो साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्ष में बिरतियां तो मनुख के अंदर है। तो जो समाज नाल संघर्ष करता है समाज के नियम तोड़ता है, कानून नूं तोड़ता है, मर्यादावां तोड़ता है और तोड़ के अपना मतलब हल करता है। दूसरे पासे जो साधु है साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करता है, तो मन नाल संघर्ष की है लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, अहंकार नाल संघर्ष। और ये देखने विच आया है यह संघर्ष मनुख कल्या ही करता है, इस विच दूजा तीजा चौथा पंजवा सहायक नहीं आता बल्कि बाधक ही बन गया। तनहाई चाहिए, एकांत चाहिए, रहे एकांत एको मन वसया आशा माए निराशो। जो समाज नाल संघर्ष करता है इन्हें दूजे तीजे की लोड़ होती है, जो कानून नाल संघर्ष करता है संसार नाल संघर्ष करता है ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, गौ बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहिंदा हुंना, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकता है पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकता है पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर ते सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। कि कौम की गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे का पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आता। ऐसा देखण विच आया है, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के घर विच परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा हुए। कंस अधार्मिक है पर वक्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे उमामा ने। लेकिन समय का अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट, गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे इतिहास विच ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है उसका पति नहीं है, सुकरात धार्मिक है उसकी पत्नी नहीं है, पर हां पति धनवान है पत्नी धनवान है, पिता धनवान है पुत्र धनवान है, सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहने ने रूहे जमीन जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन पे आज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जांदा है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन हो गया। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता की झोली विच जो है पै जाएगा। तो यह निजी है और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं होंदा, ना पत्नी सहायक बनती है, ना भरा सहायक बनता है, ना पुत्र सहायक बनते, बन ही नहीं सकते। अंदर की दुनिया विच ये सारा परिवार, ये कौम, ये देश प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलीन करना पड़ेगा। इस वास्ते सत्तवादियों के टोले नहीं आते, डाकुआं के टोले आते ने, दुष्टां के ग्रोह होंदे ने, चोरां के ग्रोह होंदे ने, संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा। कहने चंदन तर न बन बन साधना पुर पुर मान, हर जंगल विच चंदन का वृक्ष नहीं है, हर गांव विच हर शहर विच कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल विच चंदन है, किसी किसी शहर विच कोई एक अद संत है, बैठा है, अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति विच लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश विच लीन है। तो जिहड़े जिहड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके, वो संसार नाल संघर्ष करन नू तत्पर हो गए, और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी विच डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तनहाई विच किसे एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी विच चोरां दे ग्रोह हो सकते हैं, डाकुआं दे ग्रोह हो सकते हैं, दुराचारियां दे ग्रोह हो सकते हैं। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हा जिन्हा ने भी समाज नाल संघर्ष किया, कानून नाल संघर्ष किया और दुनिया नूं दुखद किया, उन्होंने रात दी तारीकी नूं वरतिया। जिन्होंने अपने मन नाल संघर्ष किया ते परम आनंद की प्राप्ति की, उन्होंने अमृत वेले तो मदद ली, सुबह तो मदद ली, अल्लाह की सुबह ब्रह्म मुहूर्त तो मदद ली, अमृत वेले तो मदद ली, और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी, और बहुत वड्डी सौगात उस पुरुष की झोली च पा दिती। उस समय ने सहायक बनके, मददगार करके बनके, तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावे प्रभु चिंतन नाल ए सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नू जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, हां संसार कामना मन विच रखण वाले किसे वक्त भी इबादत कर सकदे ने, उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी, कोई चाहत आउंदी। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकदे, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहिंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनू बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हाथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नू इंज नहीं कहिंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर, वो इंज कहिंदा हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी हूं, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी हूं। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜੋ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ, ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਂਬਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੱਡ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀ ਗਏ ਅਰਦਾਸ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ तीन पड़ाव ने प्रयास अरदास प्रसाद। प्रथम ते प्रयास ही है, मन नाल संघर्ष करन दा, अमृत वेले उठना है, जप है, तप है, सत्संग है, बाणी दा पाठ है, सतपुरुषां दी सोबत है, ए प्रयास है। लेकिन प्रयास लंबे समय तक चलता रहे ते प्राप्ति कुछ भी ना होवे तो कहन ऐसी हालत दे अंदरों अरवास

कृष्ण तेरी सुखवाई है मन माही धना, दृष्टि तेरी सुखवाई है मन माही धना, जाको तुम कृपाल।

जग दुर्कर अमृत रजो नानक मिले हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा धारा मोहलिया मोहलिया मोहलिया।

0: मानुष जी को मत मन मन जब जब राम रंगी ले राम हम तब अकुल निरंजन सुमन मनया मेरे आधारा हर हर नाम नान राम तारा मोहन भोलिया मोहन
1: मोहन

रतन मन मौला नाम से पंडरी लाली पंड बुलंद मेरा अंदर संदा गुरु दर्शन दे

कला है भगर सौंपे जिस भंडार भंडार फिर पुछ न लिखिया ना फिर पुछ न लिखिया ना हाँ बलहारी जन हाँ बलहारी जन कसम में पाड़िया हाँ बलहारी जन कसम में पाड़िया बलहारी ओ बलहारी जस मैं पाया ओ बलहारी जस मैं पाया

नो लगा रंग जखनो लगा रंग जखनो लगा रंग जखनो लगा रंग रंग लगते रंग लगते रंग रखते रंग रखते रंग रखते रंग रखते कितनो लगा रंग कितनो लगा रंग रंग रखते रंग रखते उना उसको नाम आधार उना उसको नाम आधार उना उसको नाम आधार उना उसको नाम आधार Oh, my God.

0: मिलिया गुर आए मिलिया गुर आए मिलिया गुर आए मिलिया गुर आए
1: मिलिया गुर आए
0: प्रभु जानिया प्रभु जानिया

0: Oi, oi, oi, oi.
1: अमृत नाम रित महदिया अमृत नाम रित महदिया गुरपुरे सब पूजा किया गुर

जब गुर बोले तब विषम बोले जाए, हम जैसे अपराधी और कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए हम जैसे अपराधी और कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए।

कर दोस्ती, गुरमुख से कर दोस्ती, गुरमुख से कर दोस्ती, गुरमुख से कर दोस्ती, गुरमुख से कर दोस्ती, गुरमुख

दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन जमपुर बदे मारिए बेला नाल दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता

जिन गुरमुख नाम तिहाया आए ते परवान। जिन गुरमुख नाम तिहाया आए ते परवान। नानक कुल उधारे अपना, नानक कुल उधारे अपना।

0: किस जाने का बलिहार किस जाने का बलिहार किस जाने का बलिहार
1: ਜੀ ਭੱਜਿਆ।

बाप जफर दे मुरार, बाप जफर दे मुरार, जप जफर दे मुरार, जप जफर दे मुरार।

दिल संगल हंस कराइए हंसा हीरा मोती चूरना हंसा हीरा मोती चूरना हंसा हीरा हीरा मोती चूरना हंसा हीरा पालन जाए रंग खूब खिलाइए।

बिखर बिखपाही माया मोह परम तुले सुख धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण।

जाने जितियां मुखाई आपे जाने आपे दे आखे से पे गई गए जिसनो बख्शे शब्द सला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे मुल जाही अमुल भाई अमुला समाही अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तौल मुल प्रवान अमुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुल अमुल आख न जाई आख आग्रह बुलाई आख बीत पाठ पुराण आख अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल अवह मुल ले जाही अमुल भाई अमुला सुमाही अमुल धर्म मुल दीवान।

वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बखयान आख है ब्रह्मे आख है अंदर आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है गीते गीते बुद्ध

जिनके राम बसे मन माए, जिथे भगत बसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, जिथे खंड मंडल बर पंड, जी को कथे अंत न अंत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकुम देव देवकार, वेखे विकसे कर विचार।

कहती मैं कि रोजी रजा कर ही मेरा कह के बाग भी है बैं के गैबल गैब है कि आप बोल गुनाह है कि शाह निशाह है कि कारण कुंद है कि रोजी दहन दें कि राज करीम है कि करमंग करीम है कि सरबंग कली है कि सरबंग दली है कि सर्वत्र माने हैं कि सर्वत्र दाने आएंगे सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पावन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र बेस है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र द्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने हैं सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकलो लाम है के साहेब कलाम है के उसनो वजू है तमाम रजू है हमेशन सलाम है सली कदम धाम है गरीब लसकाशता है गरीब लपरास्त है बलंदलो मकान है जमीन वल जमान है तमीज वल तमाम है रजू वल नदान है हरी फल अजीम है रजाग यकीन है नेक वल तरंग है भेद है पंग है अजीज वल नवाज है गरीब लखरा

निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है जाचरी शंभ अपंग है नंग है पीख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है पय है पूत है तूत है अनाश है उदास है दंद है बंद है अपगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निजंत है सनंत है लेख है देख है लेख है पीख है टाह है गाय संभ है गंभ है नील है नाद है नित है स्नित है जात है जाद है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राण।

अंगंग स्वरूपे अपंगंग बभूते परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते अनंगी अनामे निरपंगी दृकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीकामि तौमी गाय सदैव प्रवाह जय जय भगवती शांत दव प्रसाद हे जा हर जूर है कि हाजर जूर है मेसर सलाम है समासल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उसल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है के रोजी दहंद है कि राज ग्रह

करणालया है, अर्घालया है, खल खंडन है, महमंडन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, धृत के धरण है, जग के कारण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वभाष है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, ब्रह्मांड है, खल खंड है, परदे पर है, करुणा कर है, जप जप तप तप है, अकृता कृता मृता मृत है, अजबा करता है, मृदा मृदा है, निर्नायिका है, खड़कायिका है, विश्वपुर है, करुणालय है, सर्वनायिका है, सर्वपायिका है, पाव पंजन है, अर्गंजन है, रपदापन है, जप जापन है, अकलन करता है, सर्वा करता है, कर्ता कर है, हरदार है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, जस के जास है, भुजंग प्रयात शंभ, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगी, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, दृभंगी दृ

काहूल पाहन पूरी तरह सर काहूल लंग कर लटकायो काहूल खुआर बाजी दिशा में काहू पिछा को सीध नवायो पूर कर और जैसा बीजा गो सर।

संग रहे आए पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सुतम ते पाऊं। सेवक सिख मारे तारी है चुन चुन सत्र मारे मारी है। आप हाथ है मुझे भरे आए मरण काल का त्रास में भरे आए। हूँ जो सदा हमारे पछा सरिया तो जू करे और अच्छा।

सारी है जैसी अग्नो दरभय तैसी बार माया माया अगन सब एको जही कल तैखे दर जाया जान तिस पाणा दा जमया प्रवार भला पाया लिव छुड़ के लगी दृष्णा माया अमर वरदाया ए माया जदार विसरै मोह बुझै भाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी दिनी विचे माया पाया हर आप मुल कहै मुल न पाया जाई मुल न पाया जाए किसै बिटो रहे लोक बिल लाई ऐसा सतगुर जी मिलाए जिसनो सिर संभिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप मुल कहै भगत न के नानका जिन हर बल पाए।

नाही यंत्र असा प्राव के सिमरण पूर्णे असा प्राव के सिमरण मन की मल जाए अमृत नाम रिद माय समाए प्रभु जी बसे सादगी रसना नानक जन का दास संदसना प्राव को सिमरे से तरमंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्राव को सिमरे से जन प्रवान प्राव को सिमरे से पुरख प्रधान प्राव को सिमरे से बेमुतादे प्राव को सिमरे से सर्व के राजे प्राव को सिमरे से सुखवासी प्राव को सिमरे सदा विनाशी सिमरण से लागे जिने आप दयाला नानक जान की मंगे रवाला प्राव को सिमरे से पर उपकारी प्राव को सिमरे तिन सद बलिहारी प्राव को सिमरे से मुख सुहावै प्राव को सिमरे तिन सुख बिहावै प्राव को सिमरै तिने आत्म जीता प्राव को सिमरै तिन निर्मल लीता प्राव को सिमरै तिने अंधक नेरे प्राव को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरण पूरे भाग प्राव कै सिमरण कार्य पूरे प्राव कै सिमरण कबूना झूरै प्राव कै सिमरण हर गुण बाणी प्राव कै सिमरण सहस माणी प्राव कै सिमरण नैचल आसन प्राव कै सिमरण कमल बिगासन प्राव कै सिमरण अनहा चुनकार सुख प्राव सिमरण का अंतना पार सिमरे से जन जिनको प्रमया नानक तिया शरणी पया हा सिमरन कर भगत प्रगटाए हा सिमरन लग वेद उपाए हा सिमरन भय सिर जति दाते हा सिमरन नीचा कुंड जाते हा सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर

जय मात पिता सुखमीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय। जय महा भ्याण दूजम दलै तय केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिल माए उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पापर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सिष्ट को राजा दुखियार का नाम जपत होए सुखिया। ला करोरी बंदना परै हर का नाम जपत ने सरै। अनक मार रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत अगावै। जय मार्ग जात है कीला तै हर नाम संग हो सुहिला। ऐसा नाम मन सदा ध्याई नानक गुरमुख परम गत पाईऐ। छूट नाही कोड़ लख बाही नाम जात है पार प्राय। अनक बिघन जाय संघार है हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जोन जन में मर जाम नाम जोत पाए विश्राम। हो मैला अमल कबुना धोवे हर का नाम कूट भाव खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साधके संग। जय मार के गने जाय ना कोसा हर का नाम मुआ संग तोसा। जय पेंडे मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जा बन तेरा कोना सियानू हर का नाम तै नाल पछानू। जय महा भ्याण तपत गो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जय तिरखा मन तुझे अकरक तै नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत सन दिन रात हर हर औखद साध कुमात। हर जन के हर नाम निदान पार मजन जन की नोदान। मन ते रंग मन तन रंग रति रंग एके नानक जन के बिरत बिकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जद का परे ना भंग। हर का नाम जन की वडे आई हर के नाम जन सूबा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कशनाई ब्योग। जन रात हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मालक दीना हर तन जन को आप्रभ दीना। हर हर जन के उड़ सतानी हर प्रताप जन अवरना जानी। ओत को जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुगत वो करे नानक जन संग कीते तरे। पार जात हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरित बसै। संत प्रताप दुरसव नसै संत का संग बड भागी पाईऐ। संत की सेवा नाम ते आईऐ नाम तुलका शिवर ना हुए। नान गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक। वो शास्त्र वो सिमरति पेख सर्व टंडोल पूजत नाही हर हरे। नानक नाम अमोल अस्पदी जाप ताव ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत बख्यान। योग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया सगल त्याग मन मदे फिरियानक प्रकार किए। वो जतना पुण दान होमे वो रतना शरीर कटाए होमे कर राती। वर्त नेम करे वो भाती नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चल जीवै। महा उदास पीसर थीवै अगन माय होमत प्राण। कनक असभ है वर भूम दान नियोली कर्म करे वो आसन। जैन मार्ग संयम साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तौ पी हो मैं मैल ना जावै। हर के नाम समस्त कष्ट नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए। मन कामना तीर दे छुटे कर घुमाना मन ते हुटे सोच करे दिन से रात। मन की मैल ना तन ते जात इस दे को बहुत साधना करे मन ते कबू ना बिखिया डरै। जल तो वे बोधे अनी सुध काओ ए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच। नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहु सियाण जम का भौ व्याप। अनक जतन कर त्रिष्ण ना त्रापै पेख अनेक नि बूझै कोटे उपाव दरगे नि सीजै। टूट सुनाए उब प्याल मोए व्यापे माया जाल अवर कतू सगली जम डानै। गोविंद भजन बिंत नि मानै हर का नाम जब दुख जाए। नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी सोभा लोरे सा संग हुमै छोरे। जे को जन मरण से डरे साजना की शरणी परै। जे जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने।

जय प्रसाद सुख सेज सुई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब कऊ मन मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दग मन पावे नानक पासे ती कर जावे जय प्रसाद अरो कंचन दे लिवला वो जिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचाए मन सा सा सिमरो प्रभ उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद या भूखन पैरी जय मन ती सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त असबारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राग परोए प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख जय प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद वचा

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जी बसना, जय प्रसाद हस कर चले, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परमगत पावे, जय प्रसाद सुख सह

ज्ञानी मर्ता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानिया नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आव निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी

गुरप्रसाद विख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मते को ऐसा प्रस बैस नो सो जिस उपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे न कर्म तिस बैस नो का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर निमरण गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावै नानक ओ बैस नो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टैर करे नतनीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हिरदे बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै सो मन पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारस की उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय सावे सो पंडित फिर जो ना आवे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने असूल चौबरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौबरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत हुए सा संग पावे जन कोय कर कृपांतर उतारे पस प्रीत मुग्द पात्र को तारे सर्व रोग का उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काऊ जुगत किते ना पाईए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पावम का निवास तिस का नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया।

प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सुख हावै तैसा हरक तैसा सोग सदानंद तनि वियोग तैसा स्वर्ण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा रजान जो वरताए साई जुगत नानक जो पुर किए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जे जित कर रख तैसा तिन्ना आपे करन करावन जोग प्रभ भावै सोई पुन होग पसरे आप अंत तरंग लखे।

कहूँ महा क्रोध विकराल, कहूँ सर्व की होत्र बाल, कहूँ होए बह बड़ राजा, कहूँ भिखारी नीच का साजा। कहूँ आप कीर्त में आवे, कहूँ पला पला कहावे, जो प्रभ राखे तेवी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कहूँ होए पंडित करे बखान, कहूँ मोन धारी लावे ध्यान, कहूँ तट तीर्थ स्नान, कहूँ से साधक मुगियान, कहूँ कीट हस्त तंग हुई दिया। अनक जोन पर मैं परमिया, नानू नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभ भावे तिवे रचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोय। कहूँ सात संग ते पावे, उस स्थान ते बोलना आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान सलोक। सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले अस्पदी, जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो बसवान, जो जाने मैं जोवन बंत, सो होवत बिस्तरा का जंत। आप सो कर्म बंद कहावे, जन्म मरे बोजोन प्रमावे, धन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानकी हां मुकत आगे सुख पावे, तन मानता हुए कर कर बावे, तृण समान कर संग ना जावे, बोला सुकर मान के ऊपर करे आस पाल, भी तरता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिने में होए जाए पसमंत। इसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जहाँ का मिटे विमान, सो जन नानक दरगे प्रवान, कूट कर्म करे उतारे श्रम पावे, सगले बिरथार, अनक तपस्या करे अहंकार, नारक सुर्ख फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म निंदर बैर, दरगे को कैसे कवे, आप सो जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे, सर्व की रीन जहाँ का मन होए, कहो नानक ता की निर्मल सोए। जाव लग जाने मुझे कछुए, तब इसको सुख नाही कोए, जब जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नै चल नाही चीत, जब लग मोह मगन समाए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक छूटे, सह खटेला कूट धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे नै त्रिपतावे, खप खप मरे, बिना संतोख नहीं पूरा जय, सुपन मनोरथ बिरते सब का जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, कारण करावण आपे आप, सदा सदा नान कर जाप, करण करावण करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृश्य करे तैसा होए, आपे आप आप रब सोए, जो किसी नो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, बूझे देखा करे बबेक आपे, एक आपे अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक साधि हिरिया समाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो अपन बिसार, सब किस उसका करने हार, उसते पिन कहो किस होए, थान थनंतरी कैस होए, अपने चलते आप करने हार, खोत करे रंग अपार, मन में आप मने अपने माहे, नानक कीमत कहना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदरिया पारिया नूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण।

संत सरण जो जन परै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बोर बोरे अवतार अस्परी संत के दुखने आर जा कटे संत के दुखन जम से नहीं छूटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हुए मलीन संत के दुखन सुभातहीन संत के अति को रखे ना कोई संत के दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संसंग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जोन लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संतन के दुखन त्रेत जोन करमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संतन कै दुखन सब कुशल है संतन कै संत के दुखन ती सब जाए संत के दुखन नीच नचाए संत दुखी का थाओ को नाए नानक संत भावे तो सोपी गत पाए संत का निंदक महात ताए संत का निंदक फिटे करना पाए संत का निंदक महात यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तहीन संत का निंदक दुखी यार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसी का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी सदा सर्ग महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख से टर है संत के दुखी को नाही था वो नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी आज भी से टूटे संत का दुखी के देखाए ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर दे तो था ज्यो सास बिना मृत्य की लोता संत के दुखी की जड़ किसना है अपन भी जा पे खाए संत के दुखी को बना रखना नानक संत पावे ता ले उभार संत का दुखी बिललाए ज्यो जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा है ज्यो पाव किन्न ने धरापै संत का दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिसिया कहत किरत निंदका तुर ही पया नानक ज्योतिष भावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गय मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय संत के दुखी की पूजे ना आसान संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख ना त्रिष्टे कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया कृपना मेटे कोई नानक जाने साचा सोए साव काट तिसके ओ करण हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्राव की उस्तत करो दिन रात इसे त्याहो साज ग्रास सब की बरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेरे अब करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे बटभागी नानक जन से श्लोक तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक या सर मन रखो नानक दूप भरम को जाय अस्परी मानो की टे बिरथी सब जान देवन को एक भगवान है जिसके दिए रहे अगाए भोरना तृष्णा लगे आए मारे राखे को आप मानो के कठिनाई हाथ इसका हुक्म सुख हुए जिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रास होए नानक बिघन ना लागे कोई उसद मन में कारण अहंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो नैनो पेठा गुकार रंग सा संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाव जपी अरबिंद कर हर कर्म सुरन हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़पा गीते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से धर्मंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक एक पहचाने तुत की सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सूजे जिसकी जानो तृष्णा बूझे सा संगार अर जस कहत सर्व रोग त्यो अर्जन रहत आंदिन कीर्तन केवल बखान ग्रस्त में सोई निर्वाणे के ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा पार ब्रह्म की जिसमान भूख नानक दिसे न लागे दुख जिसको हर प्रमाण चित आवे सो संसु हिला नींद लावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसे डरे जैसा सात ऐसा दिसाय अपने कार्य में आसमाया सूद सूद सूद सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझे आ जाओ देखो तब सब किस मूल नानक सो सुख में सोई असूल नै के जन्म नै किस मरै आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टिया दृष्टि आ गया घारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आव सगल में आप अनक जूत राय थापो थाप अवनासी नाई किस खंड धारण धारियो ब्रह्मंड अलख भे पुर प्रताप आव जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभा वान सगल संसार उदरे दिन मन दे प्रभु के सेव सर्व उदाहरण प्रभु के सेवक दू विस्तार ने आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जपै ने हाल उनकी सेवा सुई लग गए जसनो कृपा करे वट पागे नाम जत पाए विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम कर महान है जोग करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे असंग सह सुभाए होवे सोए करणे हार पछाणे सोए
ਪ੍ਰਭਾ ਕੀ ਅਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾਤ ਐਸਾ ਦਿਸਤਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਉਹ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਆਏ ਆਪ ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਸੇ ਕੋ ਆਪ ਜੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਆਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ ਤਿਸੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾਰ ਜਾਪ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਕਟ ਸੋ ਹੈ ਧਰਮਾਨਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕਹੂ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ ਜੇ ਕੋ

मन मन प्रभु द्वार की नाइन दे दिस्तावत या बैठा है ता को बिगड़ ना लागे कोई जा कर दिवस यार सोए कलता थी ठंडा हर ना सिमर सिमर सदा सुख पाओ भोविड़ से पूर्ण होए आस भगत पाया आत्म प्रगा चित कर जाए बिसे विनासी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सुखा चुका चा।

सिंह सास बेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बस नानक फल पाए संग न चल तेरे तना दुख्या लवटावे मूर्ख मन सो तुम मीत कुटुंबर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकारिया सासी रथ सवारी झूठा डाम झूठ पसारी जिंदी तिस बुझना बिगाना नाम विस्तार नान पछताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल विख जाए आप जुबो ब्रह नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर गुणाओ सह सुभा नान गुण गाओ गुंगावतरी उतर समैल बिन जाय होमे बिखैल होए चिंत बसे सुखनाल सात गिरास हर नाम समाले आषाढ़ सियाणम तगली मना सासंग पावे सच तना हर पूंजी साई करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्वनंत्रे को देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सदा एक सिमर एको मन एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक हरियाप एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर्यो प्राव्यापन कवि सारे भय एक आराध प्राशत गए मंत्र

आवत कऊ नरक को सुर्ग मिशावत आल जाल माया जंजात होमे मो परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार के उखान अपन खेल आप कर देखे के संकोचे तो नानक कह जय अवगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाका आपे धनी उनकी शोभा उन बनी आपे खोद करे अणद चोज आपे रस भुगण निर्जोग जिस भावे तिसे अपन न लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेस मारिया था गंध तो लै त्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानक को पसरिया दूजा कह दिसार आसपदी आप कथिया सुने हार आपे का विसार जांत भावता सृष्टि उपाय अपने भाने ले समाए तुम ते फिर नहीं किसोए अपन सुसव जगत परोए जान चुको प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्कवे ता नानक सगल सिसका जेता जी जंत्र सब ता के आ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिसरा कित कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो विस्तारे जेता जी अवर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राज जी की जुग जाके सब हाथ पूर्ण पूर्ण अंतर बार जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूरे दयाल सब उपरोध कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रियो ब्याप प्रतिपाले जीवन व भांत जो जो रचे सो तिसे त्याग जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने कर्ण हर नानक इक जाने जान लागा रे के नाए जिसकी आसना बिरती जाए सेवको सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाए से ऊपर नहीं विचार जाके मन बसे अंधकार बंधन तोड़ पै निर्भय अण दिन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक प्रभु आपे मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हार के गुण गाओ प्राण तरण कहे स्वाओ।

सफल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा सेव प्रवान अंतरयामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध सन्नान कर।

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश पावन निकट कर भेख, सा सा सिमरो गोविंद माने अंतर की उतरे चिंद, आस अनंत त्यागो तरंग सांझना की तूर मन मांगे, आप छोट बेनती करो सा संग्रगण सागर तरो, हार तन के पर लियो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद सा संग भज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो, चेचित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दया दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन, सुनत कुमार होत उदार।

0: जंतर से करना किया चिंता विचरणी सा, सो करता चिंता करे दिन साया जाग, से तुम्हारी भाग
1: लख ने किए चंगे आइया लख पुन प्रवान लख तप ऊपर तीर्था सहजोग वैबाण लख सूरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पढ़ पुराण जिन करता करना किया।

0: एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव सहजे को जाने पहे नानक ताक दास है सो इंद्र जन देव महला पहला
1: कुंभे बद्दा जल रहे।

श्याम कहे सतम्बर स्वामी सच मै अस सच रहे सबको सच समावे हृदय कह रहे भरपूर राम नाम देवा मसूर नाय लय पराश जाय नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर शली चंद्र।

पौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे तसाई कर कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनाया होवे परमान तक खासने का महल पाए सी।

जनकर ब्राह्मण पूरे नादो न प्यावे साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका देर धोती का खाई हाथ सूरी जगत का साई नील वस्त्र पहरो है प्रवान मले स्थान ले पूजे पुराण अब आख्या का कुठा बकरा खाना चौंक।

बढ़िया चलता हूँ, पर मैं थोड़ा वक्त जो ताजो में इस पट्टू स्पाई के मुंह इस पानी का पालवा पर सिख जिस तरह गुस्से के बीच आके खड़े वचन कर रहे ने भाई कन्हैया जी ने, भाई कन्हैया जी जिस तरह हाथ जोड़ के बड़े मिठे से प्यारे वचन के नाल जवाब दे रहे हैं, और सवाल के जवाब जो भाई कन्हैया जी और सिखों के विचार मैदान

0: जी आज सब तो पहला अवतार अकेडमी बड़ो सहदिया बीबिया ने ढाड़ी जते दी हाजरी लवाओ ते आखो सारे गजवत के
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: धन धन चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज ने गुरु अमरदास जी की अथाह सेवा करके इनिया बख्शिशा प्राप्त कर लिया के भाई जेठा जी तो श्री गुरु रामदास जी बन गए। सोडी सुल्तान चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज ने जिथे गुरगद्दी से बैठ के अनेक पर्व का किए उथे 29 रागा विच बाणी रच के संगता नु कीर्तन नाल जोड़िया बाणी नाल जोड़िया। इसके सिखा ने अर्ज की सच्चे पातशाह सिख दी की रेणी बेणी होनी चाहिदी है ओ केड़ा मार्ग है जिससे एक सिख चल के अपना जीवन सुधार सके। तब पातशाह ने ए शब्द उचारिया गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभासी इस्नान करे अमृत सरनावे उपदेश गुरु हर हर जब जापे सब किलवित पाप आप दुख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बेंदिया उड़दिया हर नाम त्यावे जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर से गुरु मन पावे जिस न दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर से गुरु देश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिखी जो आप जपे अवे नाम जवावे। गुरु रामदास जी महाराज ने जिस तरह अमृतसर सरोवर प्रगट करके शहर बताया ओ कौतक ओ इतिहास आज की सेवा विच पेश करन लगे हां। मुगलों के समय पंजाब में जिमीदारी का प्रबंध सी ते पट्टी के इलाके का दुनी चंद जिमीदार सी। सरकार वालों उस नूं राजे का खिताब मिलिया होया सी ते ओ उत्थों दा वड्डा अफसर आप ही सी। दुनी चंद दे घर छे लड़कियां पैदा हुईयां बहुत पूजा पाठ फुल दान करन तो बाद भी जब लड़के नहीं था सकले भी लड़की पैदा हो गई ता दुनी चंद अकाल पुरख दा भाणा ना समझ सकिया अते नास्तक हो गया। एक दिन लड़कियां नाल हंसदिया खेड़दिया राजा पुछण लगा तुसी किसदा दिता खांदिया हो ता सब ने वारी वारी जवाब दिता पिता जी तुसी भी साडे अन्नदाता हो सब कुछ तुसी ही ता सानू देंदे हो पर अकाल पुरख दी बख्शिश वाली बीबी रसी ने सिदक दृढ़ता विश्वास अते निरता नाल अपने मायाकारी पिता नू जवाब है।

बीबी रजनी दी बचपन तो ही साथ संगत प्रदीक्षित तो दुनिया पहला ही दुखी थी, पर आज रजनी ने मुक्त अकाल प्रति श्रद्धा के विश्वास वाले वचन सुन के दुनिया चंद पड़क उठा। क्रोध इस आके आकर लगा कि राजियां गला कर दिए और रब ओ परमात्मा जिसनू मैं सारी उम्र पूजा रहा पर पत्थर का देवता न मनिया, सब पखंड के धोखे मैं देखांगा कि केड़ा रब तेरी मदद करने लई सामने आउंदा है। लगी अग सुन के दुनी चंद ताई डाडा विच क्रोध दे आउंदा है, केड़ा वेख लू हुणे करतार एदा एनू किस तरह रिजक पहुंचाउंदा है, ओदे लेख वेखू निकल हार वेखू एनू क्यों जा राज पुगा आउंदा है। फिर सामने लिया के लांगिया नू राजा गुस्से दे विच सुनाउंदा है, पट्टी विच जो पिंगला है कोड़ा, पट्टी विच जो पिंगला है कोड़ा लियाओ उसनू हुकम चढ़ाउंदा है, ओदे नाल रजनी नू व्याउणे वेखू केड़ा फिर खट खवाउंदा है। पट्टी शहर विच पिंगला रहिंदा सी, कहिंदे ने कि कदे उस बहुत सुंदर जवान होया करदा सी, पर पिछले माड़े कर्मा करके उसनू कोर दा मारू रोग लग गया जिदे करके ओदे हाथ पैर लूंजे हो गए अते नत्ता बावां जुड़िया गईयां। शरीर ते होए जख्मां विचों हर वेले लहू अते पाक वगदा रहिंदा, पर वार वालिया ने उसका त्याग कर दिता, शहर विच रहण दा वी हक उसनू खो लिया गया। बिचारा वसां तो दूर इक झुग्गी विच पिया रहिंदा, दूर लंघन वालिया नू वी उस तों बदबू आउंदी। राजे दे हुकम नाल ओह कोहड़ी लियांदा गया, दुनी चंद ने उस नाल रजनी दा व्याह करन दा फैसला सुना दिता। ए सुन के रजनी दियां सारियां भैणां पिता नू समझाउण लगियां, पर भड़के हुए मर्द ने इक दबके नाल ही सारियां दे मुंह बंद कर दिते। फिर ओह रजनी नू समझाउण लगियां जिस तरह रजनी दियां भैणां उस नू समझा रहियां ने, उन्होंने बड़ा लोग ढाई जैसा आगे सेवा।

यह दिल्ली में रश्मि कहने लगी, अफसोस मैं अपने विचार नहीं बदल सकती, क्योंकि विचार के सिद्धांत की जीवन है। पक्के विश्वास को बिना आदमी मेरा मिट्टी का पुतला है। फिर वो अपने पिता और मुंह करके बोली, पिताजी मैनु अपने लेखा के पालन वास्ते पूरा भरोसा है, तुसी जो फैसला चाहो मैं मनने लई तैयार हाँ। पर निर्दयी पिता ने रश्मि का विवाह उस कुड़ी नाल कर दिता। फुलवर्गी राजकुमारी नाल यह वर्तावा देख के सारा शहर रो उठिया। मां ने अपनी थले नहीं समझांदी, तीनू विदा करन वेले मां भुगा मार के रो पई। सच्चिया सहेलियां जिन्हां दे प्यार दियां तंदा मां जाइयां भैणां दे प्यार नालों भी पक्कियां हुंदियां हन, जिन्हां नाल बचपन तो लेके जवानी तक हद छेड़ के समा गुजारिया ओ अखां चो नीर बहारियां सन। पर किसे दी भी हिम्मत नहीं सी के जान बुरी चंद अगे मुंह खोल सके। विछोड़े दे समय जो कुछ बीबी रश्मि अपनिया सहेलियां नूं कह रही है, उन्हें बोला नूं अकाल अकैडमी बड़ो साहिब दीआं बीबियां दा ढाडी था आज ही त्यारी से।

सारा शहर दीदी रश्मि नु विदा करन लई खड़ा सी। रश्मि दे धर्मी जीवन ने सारे शहर दे वड्डियां छोटियां दा मन मोया होया सी। सारियां भैणां नालों बीबी रश्मि हरमन

सरोवर के कंडे अपने पति का टोकरा दिखा के बीवी रश्मि लागले पिंड विचों प्रशादा और मंगल ली चली गई। एक घर में कुछ कुड़िया कठिया बह के चरखा कदरिया सन। रश्मि ने चाल ढाल वेख के उन्होंने शक होया कि ये कोई मंगती नहीं, जरूर इस नाल कोई भाणा वरतिया है जिसके कारण इस नूं अज इस हाल फिरना पै रहा है। पिंड दियां लड़कियां जो कुछ बीबी रश्मि तो पुछ रही ने उन्होंने बड़ा ढाड़ी जता आपकी सेवा में

सत संगी जनो वड भागे हो आप जी संसारिक रुझेव्या दे विचों कुछ जीवन दे पल सफल करन वास्ते समरथ गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद अंदर सत संगत दे रूप विच आप जुड़े हो गुरबाणी कीर्तन गुरु सवारे गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवन कीते हन सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे अमृत वेले धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने तखत ते सुभाईमान होके जो मुख वाक हुक्मनामा सारे संसारिक जीवां दी कल्याण हित बख्शिश कीता है पावन शब्द गौंड राग दे अंदर भगत बाणी दे सरलेख हेठ शिरोमणि भगत कबीर साहिब जी का उचारण किया होया धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 871 ते सुभाईमान है। पाठ आप जी ने सरवन किया है, विचार आप सारिया ने गुरु कृपा द्वारा मिल के सांझी करनी है। सतगुरु पावन शब्द दे राही जो ज्ञान जीवन जुगत सानू सारिया नू बख्शिश करते हैं, आओ तिस दे धारनी होने वास्ते सारे स्रोता जन ध्यान गुरु के चरणा नाल जोड़ो, सुरतिया नू टिकाओ, गज के बोलो सतनाम वाहे गुरु। विचार रहाओ दे पदे तो आरंभ होवेगी, आओ सारे स्रोता जन गुरु की कृपा दे पात्र बनो जी।

जगत प्यारी इस सुहागन अखर जिड़ा है ये माया वास्ते वरत्या गया है। माया दे संबंध विच जदो आपां गुरु साहिबान दे बचन भगत जना दे बचन पढ़दे हां सानू समझाण वास्ते किते इस माया नू सरपनी आख्या है, किते नागनी आख्या है, किते इस्त्री आख्या है, किते बलवंत आख्या है, किते माखी गया है। कई नामां दे नाल इनू सतगुरां ने पावन बारी दे अंदर वरत्या है। इत्थे महाराज भगत कबीर साहिब जी कृपा करदे ने ए माया एक सुहागन स्त्री दी तरह है, सारा जगत इस नू प्यार करदा है। एक सुहागन जगत प्यारी ए माया एक सुहागन स्त्री दी तरह है ते सारा जगत इस माया नू प्यार करदा है। अगली पंक्ति दे अंदर कृपा कीती सगले जी जंत की नारी, सारे जिया जनता दी ए सुहागन माया नारी है, स्त्री है, भाव सारे जीव इस माया नू सांभ सांभ के रख दे। सतगुरां दी पावन बारी दे अंदर कृपा कीती त्रै गुणी संसार दे अंदर झात मार के वेखिए माया नाल प्यार करन दी गल तुहाडी साडी जीवां दी नहीं बल्कि जिन्हां नू 33 करोड़ देवतियां दे विचों वड्डे देवते मन्निया जांदा सी उन्हां दे संबंध विच वी सतगुरां ने वचन कीता सरपनी ते उपर नहीं को बलिया जिन ब्रह्मा भीषण महाद्रेव छलिया। सतगुरु जी कृपा करदे ने केवल जगत दे आम लोग इस माया नू प्यार नहीं करदे बल्कि ओ देवते जिन्हां दे मंदर जगत दे अंदर पूजा वास्ते बने होए ने जिन्हां नू संसार पूजदा है उन्हां दे उत्ते भी इस माया ने अपना प्रभाव पाया। ते सतगुरां दे प्यारे बचन आप जी नू जबानी याद ने माया मनो न विसरै मांगै दम्मा दम तो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करम। सारा संसार माया दे नाल प्यार करदा है ते सारे जी जंत माया नू अपनी स्त्री दी तरह सांभ सांभ के रख दे, माया नू अपने कोल संभाल के रख

पुत्र कल तरस मित्र सखा ए बेगनकारो आयस दे हैं पौन भंडार धरा गढ़ जे तक

0: गुरदेव जी कृपाल हुए, कृपा दे घर विच आए, मेरा गुरु दे नाल मिलाप हो गया। फिर इस मैनू माया दा भेद आ गया, इस माया दा मैं भेद जान लिया, क्योंकि जिन्हां नू भेद आया उन्होंने ये वचन कह दिते, कबीर माया होई चोरटी, मुछ मुछ लावे हाट, एक कबीरा नाम उसे जिन किन्नी बारह बाट। भगत जी आखते ने जदों गुरदेव कृपालु होए, गुरदेव नाल मिलाप होया, गुरु नाल मिलाप हो गया, ते हुण मैनू इस माया दा भेद आ गया। भेद आन तो भाव इस माया की वरतों मैनू करनी जीवन दे विच आ गई, क्योंकि माया दा त्याग गुरमत ने सानू नहीं दस्या, माया की वरतों सिखाई है। जिहड़े आखदे असीं माया दे त्यागी हां, उन्हां नू जरूर ये वचन पढ़ लेना चाहीदा है, कहो कबीर जिस उदर तिस माया। पेट लगा होया, कपड़ा चाहीदा है, रोटी चाहीदी है, समाजिक संबंधा दे अंदर विचरना है, क्योंकि कबीर साहब दे वचन ने गरीब बंदे नू कौन आदर देंदा है, सब अमीरां दे पुजारी ने ना, भावे उन्होंने निर्णय कर दिता अखीर विच जाके अमीर कौन है गरीब कौन है, पर एक सच्चाई उन्होंने भी प्रगट कर दिती, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना तरे। हुण गुरमत ने सानू त्याग नहीं सिखाया, गुरमत ने सानू माया की वरतों सिखाई है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैशाने, सुरत शब्द पवसागर तरिया, नानक नाम बखाने।
1: कहो कबीर अब बाहर परे, संसार के अंचल लरे।
0: कबीर साहब जी आखदे ने जदों गुरु दी कृपा होई, हुण माया मेरे तो परे हट गई, पर मैं वेख्या संसार दे ए लड़ लगी हुई, संसारी बंदे माया दी पकड़ विच ने, ते जिन्ना उत्ते गुरु कृपा कर देंदा है संसार विच रहिंदियां ओ ए अवस्था बना रहिंदे ने। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुकत।